0: मैं अजल बन गए। सऊदी अरब की सरकारी खबर एजेंसी एएसपी के मुताबिक तेल की मारूफ कंपनी अरामको का हेलीकॉप्टर इतवार के रोज आबन हरमस के मगरब में सऊदी अरब के मशरकी साहली शहर राज तनोरा में गिर कर तबाह हो गया। एसपीए के मुताबिक हादसे की वजूहत जानने के लिए मुतलका इदारों के शमूलियत से तहकीकात शुरू कर दी गई है। अरामको में तकरीबन 4 माह के तातुल के बाद जुम्मे के रोज राइस तनुरा टर्मिनल पर खाम तेल की लोडिंग की कार्रवाई शुरू की थी। सऊदी अरब के मशरक की खलीज साहर पर वाकई राइस तनुरा मुल्क के तेल साफ करने और बरामदात करने के अहम तरीन मराकज में शुमार होता है।
1: तुर्की ने गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब के शहर राज तनूरा में हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक होने वाले जानी नुकसान पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। तुर्की उमूर ख्वाजा ने जारी करदा बयान में कहा कि हम इस अलमनाक हादसे में जान बहक होने वालों के लिए अल्लाह ताला से रहमत व मगफरत के तलबगार हैं और उनके अहले खाना और सऊदी अरब के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं।
0: पाकिस्तान अफगानिस्तान के मशरकी इलाकों में दहशतगर्दों की पनाहगाहों को निशाना बनाकर फजाई हमले और जमीनी कार्रवाइयां की हैं। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाइयां पाकिस्तान के सरहद के अंदर होने मोहल्ले हमलों के जवाब में की गई हैं। कार्रवाई के नतीजे में 29 दहशतगर्द हलाक हो गए। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तला'आत अताउल्लाह तारड ने कहा है कि पख्तिया और कंट्रल में 3 अफराद को इंतहाई दुरुस्त फजाई हमलों के जरिए तबाह कर दिया गया है। तारड के मुताबिक यह फजाई हमले एक वसी ऑपरेशन का हिस्सा था जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर जमीनी कार्रवाई भी शामिल थे। उन्होंने कहा इस ऑपरेशन का हदफ जमात अल हरार था जिसे अमूमन तहरीक के तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाता है। अताउल्लाह तारड ने कहा कि रात के वक्त की जाने वाली कार्रवाई कराची में हफ्ते के रोज होने वाले 3 नीम फौजी अहलकारों के हलाकत का मौजब बनने वाले हमले के जवाब में की गई है। एसोसिएटेड प्रेस ने हुकाम के हवाले से जारी करदा खबर में कहा है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इतवार के रोज पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर बड़ी ऑपरेशन किया जिसके बाद दहशतगर्दों की पनाहगाहों पर इंतहाई हसास आला से हमले किए गए जिसमें 29 दहशतगर्द मारे गए।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: इसराइल के चैनल 13 ने रिपोर्ट किया है कि इसराइली सियासी और सिक्योरिटी अहदेदारान ने बैन अल-अक़वामी खदशात के दरमियान गजा से फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने के मंसूबों के हवाले से रज़ाकाराना हिजरत की इस्तिलाह को फ्री मूवमेंट प्लान में बदल दिया है। चैनल 13 ने नाम जाहिर न करने वाले बाखबर ज़राए का हवाला देते हुए कहा कि मुतालका इदारों बशमूल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस इदारों को हिदायत जारी की गई कि इस मंसूबे को बैन अल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा काबिल कबूल समझी जाने वाली ज़बान में दोबारा मुतारफ़ कराया जाए। चैनल ने मज़ीद कहा कि वज़राए जो मुतालिका ममालिक के साथ राब्तों में थे इस उम्मीद का इजहार कर रहे थे कि इस्तलाह की यह तब्दीली उन ममालिक की पोजीशन बदलने और पहले की नाकामियों के बाद मंसूबे को दोबारा फाल करने में मदद दे सकती है। एक सीनियर इसराइली अहदेदार जिसका नाम जाहिर नहीं किया गया उसने एतराफ़ किया कि हमास गजा में अभी भी मौजूद है और इसराइल कोशिश कर रहा है कि जितना ज़्यादा मुमकिन हो उतने फ़लस्तीनी गजा से निकाले जाएँ। अप्रैल में इसराइली रोजनामा हारिज ने रिपोर्ट किया कि नेतन्याहू ने अपनी बैन अल-अक़वामी उमूर की मुशीर कैरोलिन ग्लिक को फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करने के मंसूबों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जिनमें खुद मुख्तार खत्ते सोमाली लैंड और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ रबते भी शामिल थे। हालांकि इन कोशिशों का कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ।
0: रूस ने यूक्रेन ट्रा हमलों की बिना पर फैनी ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद कई इलाकों में ईंधन की फरोख्त पर पाबंदियां आयद करती हैं, जबकि सदर व्लादिमीर पुतिन ने इतराफ किया है मुल्क को ईंधन की कुछ कमी का सामना है। इलाके गवर्नर इगोर कोसबेफ ने कहा मोटर ईंधन की कमी की वजह से हाई अलर्ट की हालत नाफज कर दी गई है। रूस नेफ्ट गैस स्टेशनों पर खरीदारी की हद 50 लीटर फी गाड़ी है। उन्होंने रूसी सोशल मीडिया मैक्स पर लिखा गाड़ी के टैंक के अलावा किसी दूसरी शहर में ईंधन की फरोख्त ममनू होगी। रूसी ऑयल रिफाइनरी में हालिया यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से कई तनसीबात ने ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं, जिसके बायस मास्को को घरेलू ईंधन की मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए वक्तन फक्तन पाबंदियां आयद करनी पड़ रही हैं। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने दावा किया कि फौज ने रूस की 16 बड़ी ऑयल रिफाइनरियों ईंधन के टर्मिनल्स को निशाना बनाया है, जिससे रिफाइनिंग की 30 मुतासर हुई है। पुतिन ने कहा इस वक्त हम जो कुछ कर रहे हैं लेकिन ये तश्वीशनाक नहीं है। यूक्रेन के साथ जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात के इम्कान पर बात करते हुए पुतिन ने कहा तो करते हैं। वाशिंगटन की जानब से मशरिक़ वुस्ता के तनाज़ पर ईरान के साथ माहदे तय पाने के बाद अमरीकी मुज़ाकरों की एक टीम मास्को आएगी। दरअसना इलाके हुकाम ने बताया इतवार को यूक्रेन के जुनूब मशरक़ और शुमाल मशरक़ में कम अज़ कम 4 अफराद